0: बुझा बुझा तमा तमा मगर की हुंदा छेन पूरा ही एक्सो एक्सो टाने बुझन ना की जो वे
1: लिया लिछे रे
0: दिल दिया फील करें
1: FM 90.4।